0: या ठको देमो
1: ओ देमो देमो
0: या चोले सिंदिनाशिक दले सुनी तेरंग लेसन दग कोबडग नु गदबे गसाथंग टैलस कुनो दुनन द सेकर जी
1: ओ ते त छो गोल्डन बादान छेरा डोमादान छमे डोमानो छोला सोफा तंजला लोसी सेकने
0: अरे
1: ओलिनसा जिमिना डोमा छो गस्तन दसन डोमबे मोलम दे कुम ते छि ताना म
0: डोमा छो ग
1: सेन दसन डोमबे मोलम
0: किलन दसन डोमबे मोलम राजे
1: ओ या
0: या तना कब जिमिलेस न कोट गदा गो दिमो
1: या देमो

0: Reti na chok puzga yung kalma kapar thong yoko achi chok pundi ga kapar nilansk yil. Wai chok po cho demu?
1: Demu, cho demu.
0: Demu ya ke. Dina ke ga degung ga tatung ga lintzen da jil de tang alwa lhalung thar ga ngo ga alung ceser gunu ga zergindu sazga lakchi karji.
1: O ta chi jang chok kong ga manna yung achi karna go eto ga nyankan yung achi karna.
0: Kwa chen chi?
1: ओ यार अक्षी के जान तक कौन से कर दे शानो
0: से
1: इन्ना नौना तोन तक छे योनो दी जब दिन छत्ती नौना कर दे चिगा ताचम बिचार कौन इन्ना चिगानो ते शी के चिगाव के के मांसो का जान तक जगानो ते कचो लोग जाएंगो
0: अरे कुछ चीन दे ना यंग आचो के शावरे ती ना छे चक यंग आचो न दमुग अरे गे ये न दमुग तो पाई ना
1: Oh, yeah, that's not a good thing.
0: Yeah, I'm going to go to the house.